नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है मंगलवार, शक संवत 1948, असर महीने की आज दूसरी तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 जून महीने की आज 23वीं तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की पहली सभा में।

0: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत

0: फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली की गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में, यानी कि सुबह 6:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ भक्ति गीत। सुबह 6:30 पर आप सुन पाएंगे महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गाने।

सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम।

सुबह 8 बजे आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुन पाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। सुबह 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातोरी।

सुबह 9:15 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत ललरम सियामी खेलमा और उनके साथियों की आवाज़ में। सुबह 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम के अंतर्गत रांगखोल भक्ति गीत आप सुन पाएंगे ग्लोरी एंड रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में। सुबह 9:35 पर जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे इबोर बास्तिंग लक्यांग और उनके साथियों की आवाज़ में। ब्याते कार्यक्रम के तहत ब्याते आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:45 पर। गायक कलाकार रहेंगे थदवुरिंग अमलाय और उनके साथी।

सुबह 10 बजे से आप आनंद लिपाई की विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम के 5 बजे तक, लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 2 बजे मिड डे न्यूज़, दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार लेके जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के सफर को। इस सफर का सबसे पहला गाना रहेगा आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत, श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज़ में।

श्रोताओं, भी आपने सुना जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ में गजनी फिल्म का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म भारत से। इस गीत को गाया है अभिजीत श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, तुम मिले फिल्म का गीत अभी आपने सुना जावेद अली के आवाज़ में। इसी के गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का सफर यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, लिखे गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
3: हेलो, आई एम साक्षी एंड टुडे आई विल बी रिसाइटिंग अ पोएम नेम्ड इफ वंस यू हैव स्लेप्ट ऑन एन आइलैंड बाय रैचल फील्ड। इफ वंस यू हैव स्लेप्ट ऑन एन आइलैंड You'll never be quite the same. You may look as you looked the day before and go by the same old name. You may bustle about in street and shop. You may sit at home and sew. But you'll see blue water and whirling gulls wherever your feet may go. You may chat with the neighbors of this and that and close to your fire kit. But you'll hear ship whistle and lighthouse bell. And tide spit through your sleep. Oh, you won't know why, and you can't say how such change upon you came. But once you have slept on an island, you'll never be quite the same. Thank you.
2: रीगल वेली हाई स्कूल की छठवीं कक्षा में पढ़ने वाली साक्षी जेमी की जुबानी आपने सुनी ये प्यारी सी कविता। आइए बात करते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में।

श्रोताओं, आज 23 जून है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जानेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। प्लेसी की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में हुआ था आज के दिन। फेडरिक डॉगलास अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने वर्ष 1888 में आज के दिन। आज के दिन बैरन पिरे दी कुबर्टिन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोब्रेन में 1884

एनवी को स्थापना हुई आज के दिन। गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में विश्व धरोहर सूची शामिल हुआ आज के दिन। श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का जन्म वर्ष 1912 में हुआ था आज के दिन। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चांदी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था आज के दिन। आज के दिन प्रदीप कुमार बैनर्जी का जन्म वर्ष 1936 में हुआ था। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज राम नरेश सरवन का गुयाना में वर्ष 1980 में जन्म हुआ था आज के दिन। ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ।

आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन वर्ष 1961 में हुआ था आज के दिन। राजनेता तथा सामाजिक सुधारक गंगा प्रसाद वर्मा का निधन वर्ष 1914 में हुआ था आज के दिन। गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री गीजुबाई बंदेका का निधन वर्ष 1939 में हुआ था आज के दिन। भारतीय नेता एवं इंदिरा गांधी के छठे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में हुआ था आज के दिन। वैज्ञानिक डॉक्टर जॉनस सल्क का निधन वर्ष 1955 में हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

श्रोताओं, आज के दिन को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिवस हर वर्ष 23 जून को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिवस सरकारी कर्मचारियों और लोक सेवकों द्वारा समाज एवं राष्ट्र के विकास में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एडवांसिंग इनोवेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूशन, यानी सार्वजनिक संस्थानों का रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता और समावेशन का को आगे बढ़ाना। यह थीम इस बात पर बल देता है कि बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच सरकारी संस्थानों को अधिक नवोन्मेषी, सहभागी और समावेशी बनाना आवश्यक है ताकि वे नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2026 में यह संदेश देता है कि मजबूत, पारदर्शनी, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक संस्थान ही सत्य विकास और नागरिक कल्याण की आधारशिला है।

श्रोताओं, आज के दिन को इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को यानी आज के दिन इस दिन को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की विधवाओं के अधिकारों, सम्मान और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

इस दिवस का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यह समाज को विधवाओं की शिक्षित पर विचार कर स्थिति पर विचार करने और उनके प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करता है।

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और संपत्ति के अधिकारों तक उनकी समान पहुंच पहचान सुनिश्चित करना एक न्यायपूर्ण समाज की पहचान है। ये दिवस सरकारों और सामाजिक संगठनों को ऐसे नीतियाँ बनाने के लिए भी प्रेरित करता है जो विधवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बना सके।

श्रोताओं, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। इस दिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के श्रेष्ठ क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान नेता थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। एक प्रख्यात शिक्षावान, वकील और राजनेता थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में वे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति बने। स्वतंत्रता के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे, लेकिन कुछ नीतिगत मतभेद के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारा बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता के प्रबल समर्थक थे। वे जम्मू कश्मीर के विशेष प्रबंधनों के विचार विरोधी थे और उसके पूर्ण एकीकरण के पक्षधर थे। इसी उद्देश्य के लिए किए गए आंदोलन के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया, जहां 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनकी निधन हो गई। उनकी पुण्यतिथि हमें राष्ट्रीय साहस, त्याग और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर देशवासी उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि नमन करते हैं।

0: श्रुतौ आप आनंद ले रहे थे फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

आइए प्रारंभ करते हैं हमारा विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो गर्मियों के मौसम में हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, तापमान बढ़ने लगता है और हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक पसीना निकालता है। पसीने के साथ शरीर से पानी और ज़रूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं। अगर इस कमी को समय पर पूरा ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है। हमारा मस्तिष्क, हृदय, पाचन तंत्र और अन्य अंग पानी पर निर्भर करता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। श्रोताओं, गर्मियों में हाइड्रेशन रहना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं एक फिल्मी गीत।

डिहाइड्रेशन का लक्षण शुरू में आम लग सकता है, जैसे अधिक प्यास लगना, मुंह का सूखना, थकान महसूस होना, चक्कर आना या सिर दर्द होना। लेकिन अगर पानी की कमी बढ़ जाए तो व्यक्ति को हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। गर्मियों में बच्चे और बुजुर्ग डिहाइड्रेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बच्चे खेल कूद में व्यस्त होकर पानी पीना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों को कई बार प्यास कम महसूस होती है। इसी तरह बाहर काम करने वाले मजदूर, खिलाड़ी और यात्रा करने वाले लोगों को भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि हाइड्रेशन कैसे रहा जाए, तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं एक फिल्मी गीत।

श्रोता, हम बात कर रहे थे कि हाइड्रेटेड कैसे रहा जाए। सबसे पहला और सरल उपाय है दिन भर नियमित रूप से पानी पीना। प्यास लगने का इंतज़ार ना करें, अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और घर में बने फ्रेश ड्रिंक्स का सेवन भी फ़ायदेमंद है। कुछ फल और सब्जियां भी हाइड्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा और टमाटर में पानी की मात्रा अधिक होती है। इनका नियमित सेवन शरीर को ठंडक और पोषण दोनों प्रदान करता है। साथ ही बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी या शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन ना करें। ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ा सकता है। तेज़ धूप में बाहर निकलते समय हल्का और कॉटन के कपड़े पहने और संभव हो तो दोपहर के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत।

श्रोताओं, हाइड्रेशन एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त पानी पीने से हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारी एकाग्रता बनी रहती है और शरीर गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहता है। आइए इस गर्मी हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने और अपने परिवार को स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेशन को रोज़ाना की आदत बनाएंगे। याद रखिए, पानी है तो सेहत है और सेहत है तो जीवन है। इसी संदेश के साथ आज का स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम हम यहीं पर समेटते हैं। आइए सुनते हैं एक और फिल्मी गीत।

सोचता हूँ इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी

0: रखा है। बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभात। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए पुआर आंचलिक बातोरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

आइए अब आरंभ करते हैं खेलमा कार्यक्रम। खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवाएंगे ललरिम स्यामी और खेलमा और उनके साथियों की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, ललराम स्वामी खेलमा और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफरंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल भक्ति गीत ग्लोरी एंड रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही रंगोल गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत एबरबास्टिंग लक्यांग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ इबर बस्तिंग लक्यांग और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं ब्याते कार्यक्रम, सुनते हैं ब्याते आधुनिक गीत थद्वुरी गमलाय और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी आधुनिक गीत के साथ ही ब्याते गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के साथ मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़े स्टूडियोज़ हैं, फिर सब लोगों को मिल के बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वज़न बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये

0: ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये
1: जी
0: प्रॉब्लम हो रही है. जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका
1: ओ
0: होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं. अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम
1: हाँ
0: कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
1: लक्षण,
0: लक्षण
1: हाँ
0: क्या
1: क्या
0: होते
1: है
0: हैं.
1: और
0: तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं. कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है. अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें, उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर. तो ये दो तीन लक्षण हैं जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो. क्लियरली अगर आपका वज़न बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है. बट अगेन मैं यही कहूँगा कि चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं.
1: जी
0: सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते.
1: जी तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है. अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो. फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है. अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई
1: जी
0: और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है. पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है. फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी ज़िंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी ज़िंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है. बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है. टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं. एक मशीन आती है हमारे OPD में, जिसमें हम मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं. क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है.
1: जी
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं. थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में.
1: जी
0: तो एक MRI करके स्कैन आता है, जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है.
1: जी
0: अब ये सारे जो टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से. अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर ख़राब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं. बट मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: दो मिनट के
1: एकदम
0: अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है. बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं.
1: जी
0: अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे, तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे.
1: जी और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रा भी तकलीफ़ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज़ करते हैं, अपने आप ही गूगल के ज़रिए कुछ कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफ़ी साल, मैं
1: जी
0: चौदह
1: जी
0: पंद्रह साल मैंने वहाँ बिताया.
1: अच्छा
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफ़ी काफ़ी
1: जी
0: साल.
1: जी
0: फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे
1: जी
0: पेरेंट्स यहाँ थे.
1: जी जी
0: तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: ये जो
1: मेरा,
0: देश है मेरा. ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है.
1: बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया वापस।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का ख़जाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी ख़जाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लीवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वज़न कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं।

0: लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने। फैटी लिवर, स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को?
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट्स होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना।
1: क्या बात है, मुझे पसंद है। सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना ज़रूरी है कि बस भागना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आँखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और ज़िंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज़ का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज़ होना ज़रूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी,
1: उनका हम अगर डायबिटीज़ का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है,
0: जी,
1: मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज़ शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीज़न, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज़ की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज़ के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज़ नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की ज़रूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज़्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलत फहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुनें डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th ख़त्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे है, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफ़ी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी,

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को
0: जी।
1: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेथ टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफ़ी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं
0: जी।
1: बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम

0: होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे आईबीएस बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो
1: जी,
0: उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं, अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज़्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं, अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं
0: करेक्ट।
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया,
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीज़न कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज़ आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी।
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत ना डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट।
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज़ को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम
0: जी
1: क्या है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा
1: बिल्कुल।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जगजीत सिंह की आवाज है और संत कबीर का ये भक्ति पद है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा कमाल।

0: जानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना।
1: शिकायत कभी न की लबों पे सा।
0: और ये आवाज है विशाल मिश्रा की। आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

से मिनट समाज होने के खसूरत तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी। किस लिए?

0: केसरिया बालम आहुनी पधारू मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान दो पद्म

0: भूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। एक बार फिर से मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: प्रभात वाह, बहुत
1: बड़ी तालियां उनके लिए,
0: मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तू ऐसे ना थे।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एक बार फिर से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म

0: पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आप सभी को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।

0: रह दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को, जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है, छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदे और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रुमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एम जी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाते से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाते का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्री 420। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे सादे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहाँ बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियाँ छतरियाँ लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहाँ छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुना ही नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके, और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य, ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माए दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा, अच्छा मैं, की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल, और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो, भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं। आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहाँ 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदें आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद हैं, उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भाई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि भाई आज कुछ ऐसे गीत है जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नज़दीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज़ मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रहली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहां बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहाँ पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियाँ बोल दीजिए आप प्लीज़। क्या लिखा है आपने, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सकें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए। तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफ़िन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुँचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज़ बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मज़ा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज़ बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मज़ा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में, अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफ़र कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

0: फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का, ये अब जो है सफर यहाँ हमें।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात आप सुनेंगे दोपहर समाचार। समय रहेगा 2:15 का, रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के

0: प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 30 दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता

प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़। तत्पश्चात आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही दोपहर समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सभी को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का।
1: तलक छुपेगी ये तो बता छुपने।

0: तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

0: इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।
1: हला हल मद भरे श्वेत

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, कि हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है, वो है आग में घी डालना।
2: तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार

0: हैं और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में
1: और
0: बताएं।
1: इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें,
0: जी
1: और साथ ही आंगन के विषय में बताएं, उनका आंगन घर का कैसा था,
0: कैसा था,
1: कैसे
0: बिल्कुल
1: खेलते थे वो अपने आंगन में।
0: बिल्कुल। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
1: जी
0: यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन
1: ये गीत
0: लेते
1: सुन
0: हैं।
1: लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी माला
1: बिल्कुल, और
0: बने।
1: चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी जी
1: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए

0: कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
1: तो बताइए।
0: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
1: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
0: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in, जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आँखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक्स सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल। अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को

0: पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे
1: बिल्कुल।
0: तरीके
1: और
0: से।
1: आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है, उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है, कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, आरती, नागरिकों को या फिर से ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही कई बीमा कंपनियाँ भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फ़ोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमंजरी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम ये ना हो, खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और ख़राब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी,
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे ऐड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और महेश श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो

0: समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई, और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
0: बिल्कुल
1: काम
0: पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जैसे दोनों जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना।
0: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा संगीत सुन लेते हैं। अगर नजरों से नजर

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए कि
1: हाँ
0: भाई आग में घी डालने
1: घी
0: वाली
1: डालना,
0: बात।
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीज़ें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहाँ पर वहीं तक सीमित
1: बिल्कुल,
0: रखें,
1: बिल्कुल,
0: जीवन
1: ये
0: में जहाँ
1: समझाने
0: उपयोगी वहीं
1: जी,
0: करें, है
1: ये
0: ना।
1: मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं,
0: समय हो चला है एक
1: एक
0: अंतराल
1: अंतराल
0: का।
1: का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल,
1: है
0: हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।

0: रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों

0: को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
1: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
0: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
1: जी।

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो
1: हाँ
0: आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल,
0: वाली है
1: आंगन
0: कि
1: की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पर सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूँ चकिया धरना ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ।
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीज़न आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीज़ें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल,
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए
0: जी,
1: हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्यौहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मज़ा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ,
0: वाली
1: मैं ही
0: थी?
1: कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मज़ा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदें गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मज़े आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी।
0: सभी की
1: सभी
0: है
1: के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी करना, वहाँ पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज़ का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मज़ा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उनकी
1: रात
0: यादों
1: में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयाँ बिछा लेते थे, तो बहुत
0: में।
1: से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं।

0: बिल्कुल
1: से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, और जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है। और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियाँ सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतर भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहाँ धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियाँ आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूँ साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज़ है वहाँ पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मज़ा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों

0: अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया। हम
1: इस
0: लोग को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोप के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री मसेत्सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदुनियाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न संबंधित टीमों के साथ चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमरीका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये कार्रवाई अमरीका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते की समय सीमा के अनुरूप है। बैंकिंग, बीमा और समुद्री परिवहन सहित अन्य संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंधों से राहत दी गई है। अमरीका में बिक्री और वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर ईरान से तेल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार CUET के अधिक कारिक पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से विविध भारतीय कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे लगातार शाम 5 बजे तक।
3: 1984 का जमाना था।
4: कितने बड़े थे आप?
3: मैं 71 में पैदा हुआ।
4: ओह, तब तो बहुत छोटा।
3: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है। तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
4: काम क्या कर रहे थे?
3: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
4: अच्छा।
3: जो पान में सुपारी खाई
4: जी,
3: जाती
4: जी,
3: है
4: जी।
3: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
4: जी, जी।
3: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
4: जी, जी, जी।
3: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
4: हाँ।
3: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
4: रेडियो का स्विच ऑन कर,
3: हाँ, कर दिया ऑन। और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल बज रही थी। और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
4: क्या बात,
3: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
4: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे?
3: मैं, हाँ,
4: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
3: मेरे अंदर का शायर जो
4: जी,
3: है
4: जी,
3: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
4: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
3: अच्छा,
4: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम,
3: हाँ,
4: हुआ
3: तो
4: करता
3: वो
4: था।
3: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
4: जी,
3: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
4: तो वो गजल याद है?
3: गजल तो याद नहीं है।
4: हाँ।
3: क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना,
4: क्या बात है।
3: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम,
4: क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों

0: की दुनिया की शुरुआत की। तो
1: बिल्कुल
0: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
1: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
0: क्या बात है
1: जी हाँ
0: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है
1: जी
0: गानों
1: हाँ
0: की,
1: जी हाँ जी
0: उसकी
1: हाँ
0: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
1: हाँ वो सुना दें आप। मदहोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
0: क्या बात है,
1: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
0: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मदहोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ?
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
0: जी
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो। लेकिन

0: लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है।
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप
1: माँ से
0: के।
1: मिलता है
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं कैजुअली, तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद

0: था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था
1: चल रही थी,
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का।

0: दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी जी जी
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने

0: बहुत प्यार किया। और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो। और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती
1: क्या बात
0: थी
1: है बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी।

0: नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती
1: क्या बात
0: थी
1: है बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी।

0: जी
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
0: क्या बात है बहुत बढ़िया
1: और वो मुझे देती थी।

उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है। तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस

0: पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के ज़रिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है।
0: इरशाद,
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आँखों

0: हैं, वो
1: जी
0: किताब पढ़ते हैं,
1: बहुत
0: नावेल
1: पढ़ते
0: और
1: हैं जी।
0: कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो, तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गज़ल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
1: जी
0: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो

0: कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी जी
0: है ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर बताएं।
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी, जी।
0: तू मिला तो खुदा का सहारा।

0: ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज़ हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊँ फिर सुबह सुबह जागूँ तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में।
1: जी, क्या बात।
0: तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूँ समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया।

0: और उस लाइन को भी मैनेज करना,
1: जी
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र,
1: वाह।
0: ये पहली जो गज़ल थी ये फ़ायज़ अनवर

नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घर में शाम के 6:35 हो चुके हैं। स्टूडियो से मैं आपका दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए अब शुरू करते हैं आज की दूसरी सभा। दोस्तों, सभा शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:05 से आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत

8:30 का समय रहेगा कुछ फिल्मी गीतों का। आठ बजकर 45 मिनट से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या। नौ बजे आज आप सुन पाएंगे आपके एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आपके गीत।

रात के 9:30 से लेकर सवा के अंत तक यानी कि रात के 10 बजे तक आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का अवलोकन केंद्र है। दोस्तों इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब सभा को आरंभ करते हैं और सुनते हैं मार कार्यक्रम में आज कुछ मार आधुनिक गीत नेहमी लालनुत लोंग थ्याक और उनके साथियों के आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नेमी लालनुतलोंग थ्यक और उनके साथियों के गाए कुछ मार आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम समाप्त होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों आइए आप सुनते हैं जेमी कार्यक्रम में आज कुछ जेमी लोकगीत चिवांगवे जेमी और उनके साथियों की आवाज़ में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चिवांगबे जेमी और उनके साथियों के गाए कुछ जेमी लोकगीत। इसी के साथ ही आज का जेमी कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 MHz पर यह आकाशवाणी का आफलोंग केंद्र है। दोस्तों आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए संध्या आंचलिक बातरी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रदीप हफलंगबार और उनके साथियों के गाए कुछ डिमाशा आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का डिमाशा कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, आइए आप सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम में आज कुछ कार्बी आधुनिक गीत मोजारी रोंगही और उनके साथियों के आवाज़ में।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोजारी रोंगही और उनके साथियों के गाए कुछ कार्बी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, आइए आप सुनते हैं कुकी कार्यक्रम में आज कुछ कुकी पारंपरिक गीत नेमहत चोंगलोई और उनके साथियों के आवाज़ में।
1: Pan itu

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नेमहत चोंगलोई और उनके साथियों के गाए कुछ कुकी पारंपरिक गीत। इसी के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम और साथ ही आज के इस सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम समाप्त होते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अफलुंग केंद्र है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है जुदित एल रांचल और मेलोडियामो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के कृषि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेलेडी
1: और मैं हूँ जुदित। मेरी तरफ से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर। पशुपालन न केवल किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी इसका अहम भूमिका है। बीते वर्षों में पशु स्वास्थ्य सेवा

0: के विस्तार, टीकाकरण अभियानों, नस्ल सुधार कार्यक्रमों, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशु पालकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों ने पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आजीविका को भी मजबूत किया है। आज हमारे इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर भैरव काकती, जो हमारे जिला पशु चिकित्सा विभाग के हैं, DO हैं। सर, आकाशवाणी हाफलंग में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम शुरू करते हैं आज के इस विषय को। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारा जो जिला है बहुत बड़ा है, तो दूर दूर छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ पे या इन क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए मतलब आपके डिपार्टमेंट से क्या क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सभी फार्मर जितना भी सुन रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। ये हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से जो सुविधा मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का 16 सब सेंटर है और 9 डिस्पेंसरीज है। और जो आगे में मैक्सिमम वहाँ पे हम लोग का जो क्षेत्र सहायक बोलता है, जो फील्ड असिस्टेंट, वो खाली था।
0: अच्छा।
1: अभी वो ऑलरेडी फिलअप हो गया, इसीलिए गांव वाला को मतलब भरपूर जो ये चाहिए, हेल्प चाहिए, सो हेल्प मिल रहा है। और अकॉर्डिंगली हम लोग को आगे में, आप लोग को मालूम ही है, एक टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब सिचुएशन एंड कंडीशन, तो इस हिसाब से अभी भी यहाँ पे हम लोग का जितना भी डॉक्टर्स का जो पोस्ट है ऑलरेडी फिलअप है। जो सर्विस देना आगे में दे रहा था, अभी अब विद इन द 12 ईयर्स में, ये 12 साल में जो अचीवमेंट है काफ़ी डिस्टिंग्विश है। मतलब आगे में जो सर्विस आदमी लोग को नहीं मिल रहा था, तो आगे में आदमी लोग को मालूम ही नहीं था कि डिपार्टमेंट से क्या सुविधा मिलता है। लेकिन अभी एवरी फार्मर्स को मैक्सिमम मतलब 99% फार्मर को मालूम होता है कि डिपार्टमेंट से क्या क्या उन लोग का सुविधा मिल सकता है।
0: तो इन 12 वर्षों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये जो आपने डिस्पेंसरी बोला, एनिमल डिस्पेंसरी खोला गया है, अभी तो एक्टिवली काम कर रहा है
1: हाँ,
0: और
1: एक्टिवली है।
0: हमारे जो पशुपालक हैं इनको बहुत मदद भी मिल रहा है। तो ये जो दवाइयाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये जो डिस्पेंसरी में, ये मतलब हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: अभी देखिए, डिपार्टमेंट का जो हम लोग का मैंडेट है, अकॉर्डिंग दैट मैंडेट हम लोग का लाइफ स्टॉक, स्पेशली हम लोग लाइफ स्टॉक देखते हैं, जैसे मतलब भैंस हो, फिर गाय हो, बकरी हो, इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं। बाकी जो पेट एनिमल है, जो घर में पालने वाला बिल्ली कुत्ता, इन लोग को हम लोग कम प्रेफरेंस में रखता है, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही है कि लाइफ स्टॉक जो हम लोग का, जहाँ से हम लोग का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे हम लोग का मतलब इनकम सोर्स ज़्यादा हो सकता है, हम उसको थोड़ा गुरुत्व देता है। तो इसीलिए हम लोग का वहाँ पे जो इमरजेंसी, जो एसेंशियल, ये दोनों चीज़ें, इमरजेंसी एंड एसेंशियल, ये दोनों मेडिसिन एवरी सब सेंटर में, एवरी डिस्पेंसरी में अवेलेबल है। और उसका एडिशन टू दैट हम लोग का जो भी है, जैसे वैक्सीन, अभी रिसेंटली क्या हो गया, जो आदमी लोग कुत्ता भी पालता है, बिल्ली भी पालता है, लेकिन हम लोग देखा कि यहाँ पे रेबीज का जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, हम लोग बात करेंगे रेबीज का ऊपर में भी, जो कितना मतलब खतरनाक है उसको, तो उसके लिए भी वैक्सीन हम अवेलेबल करके रखा है। तो लास्ट ईयर हम लोग काफ़ी अच्छा से वो वैक्सीनेशन शेड्यूल भी हम लोग कंप्लीट किया, जहाँ पे मतलब ये रेबीज का प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था, जैसे माइबोंग हो, लांगटिंग हो, इस एरिया में, उस सब से हम लोग किया है।
2: सर, विभाग द्वारा डिजिटल या फिर ऑनलाइन सेवाओं की क्या व्यवस्था की गई है?
1: हम लोग का यहाँ पे भी सिस्टम वो है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसको सेवा सेतु बोलता है। तो सेवा सेतु का अंदर में ऐसा के सिस्टम है, हम एग्जाम्पल एक तो देगा, तो एक यहाँ का ही मतलब हाटी खाली का एक फार्मर था, तो उसको गाय लाना था मतलब बाहर से वो फार्मिंग के लिए। तो इमिडिएटली उसको लगा कि यहाँ पे अप्लाई करने से होगा, तो हम बोला कि नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो अकॉर्डिंगली ऑनलाइन में अप्लाई किया और उसको वो परमिशन मिला, और वो परमिशन मिलने के बाद वहाँ पे ट्रांसफर गया। एक वो होता है मतलब कोई एनिमल को ट्रांसफर करने के लिए, जो अभी पुलिस पकड़ता है, ये करता है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने से हम लोग ये होता है। फिर होता है कोई किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सपोज कुछ पर्पस के लिए किसी एनिमल मर गया, कुछ हो गया, उसमें आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में ये करता है। फिर हो गया डेथ सर्टिफिकेट, आजकल तो एनिमल में भी ऐसा हो गया, एक तो जहाँ पे इंश्योरेंस है तो वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट जरूरत होता है, जो जो एनिमल इंश्योरेंस करके रखता है, मरने के बाद उन लोग का कुछ वैल्यूएशन मिलता है, तो इसके लिए इंश्योरेंस पर्पस के लिए डेथ सर्टिफिकेट, तो वो भी वहाँ पे भी उपलब्ध होता है हम लोग का। और बाकी डिपार्टमेंट का जितना भी एक्टिविटीज है, तो वो हम ऑनलाइन ही करते हैं। होता है,
2: अच्छा,
1: जैसे वैक्सीनेशन हो,
2: हाँ,
1: आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम प्रजनन ये वाला, फिर बाकी ट्रीटमेंट हो, इमरजेंसी कोई सर्विस हो, वो हम ऑनलाइन सिस्टम ही इसको अपलोड करता है।
2: जी, तो ऑनलाइन आप लोग करते हैं, तो जिसको ऑनलाइन करना नहीं आता उन लोगों के लिए कैसे हेल्प करते हैं आप लोग?
1: नहीं, वो भी एक तो इजी प्रोसेस है। जिसको ये नहीं आता है तो आप लोग प्लीज आप लोग का सामने में जो भी सब सेंटर हो, डिस्पेंसरी हो, वहाँ पे जाने से डॉक्टर हो
2: जी
1: या PFA हो जो क्षेत्र सहायक हो, उन लोग को मिलने से आप लोग को हेल्प कर देगा।
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: और आप लोग को उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरा फोन नंबर हम बोल देंगे, तो वहाँ पे हमको फोन करने से भी हो जाएगा।
2: जी जी बहुत,
1: मैं हेल्प करूँगी आप लोग को।
0: सर, अभी आपने मेंशन किया था कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम के बारे में ना, तो ये कहाँ तक हमारे जिले में इसको अकॉम्प्लिश किया गया है?
1: ये एक्चुअली क्या हुआ था, आगे में एक एक एरिया के लिए था, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि फार्मर्स का डिमांड के हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट का एवरी कोना में हम लोग अवेलेबल करेंगे।
2: अच्छा,
1: तो क्योंकि देखिए, जो हम जो भी फार्मर आप लोग जो भी सुन रहे हैं मेरा बंधुगण, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप लोग के लिए ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग का लोकल गाय को हम लोग अगर उससे कृत्रिम प्रजनन करेंगे, उससे जो बच्चा निकलेगा, तो हम लोग का हिसाब से जो सोच के मतलब दिया था उस हिसाब से होगा। मतलब इस बच्चा जब ये फिर जब माँ बनेगा, उसका दूध देने वाला कैपेसिटी बढ़ेगा,
2: अच्छा,
1: गाय भी बड़ा साइज होगा, फिर उसके बाद उस गाय का बच्चा को बेचने से भी आप लोग को कोई हेफर हो, मतलब जो डेकी बोलते हैं आप लोग, उसको बेचने से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंग्लिश में बोलता है और हिंदी में कृत्रिम प्रजनन ये प्रणाली बोलता है। तो इसमें आप लोग का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जब भी गाय गर्म होने का समय आता है, आप लोग को मालूम होता है उसको देख के, तो इमिडिएटली आप लोग हम लोग का सब सेंटर हो या डिस्पेंसरी में खबर करने से वो लोग जाके करेगा। अगर आप लोग लेके आने से अच्छा बात है, अगर नहीं ला पाते तो हम लोग को बोलने से ये लोग जाके कर लेगा।
0: सर, हम लोग का जो लोकल ब्रीड है, जो देशी नस्ल बोलते हैं उनको, तो इनके संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए हमारा जो विभाग है, जो पशु चिकित्सा विभाग है, मतलब क्या काम कर रहा है इसके लिए?
1: अभी हम लोग का अभी देखिए, एक गोताड़ी बकरी भी है और गाय भी है। तो गाय में जो हम लोग का आसाम का जो गाय होता है उसको लोखिमी बोल के ब्रीड का नाम दे दिया।
2: अच्छा,
1: लोखिमी। तो हम लोग का ये पॉलिसी है कि 40% लोखिमी गाय को एज इट इज रखना है, बाकी 60% को हम लोग को AI करना है।
2: अच्छा,
1: और हम लोग भी इतना ये करता है, जो क्रॉस वाला गाय है हम उसको पहले हम ये करता है, AI करता है। तो जो प्योर वाला है, जो हम देखता है कि ये लोखिमी गाय है, जो हम लोग आसाम का ब्रीड है, तो हम उसको मतलब 50% को छोड़ देता है कि उसको नेचुरली होने दो। फिर उसके बाद बकरी का बात बोलने से, तो बकरी अभी देखिए यहाँ पे जो बकरी का ब्रीड है इसको बोलता है आसाम हिलकत। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी लाकी एनफ है कि दिमा आसाम में ही इसका प्रॉपर ब्रेड कैरेक्टरिस्टिक वाला ये आसाम बिल्कुल यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आज तक क्रॉस नहीं हुआ। बाकी कोई कोई जगह में क्रॉस हो गया, जैसे बिटेल के साथ क्रॉस होता है, तो क्रॉस होने के बाद फिर वेस्ट बंगाल का ब्लैक बंगाल है उसके साथ भी क्रॉस हो जाता है, तो हम लोग का जो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक है खत्म हो जाता है। हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग का साइड वाला छोड़ के, जैसे हाटीखाली उमरंग सुखा आसपास ये छोड़ के, बाकी अंदर में जितना भी है हम लोग का, जैसे उस एरिया में जो भी ब्रीड है हम लोग का अच्छा सिस्टम में ही है आसाम बिल्कुल। और इसमें भी हम लोग को और भी एक जानकारी देना चाहता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, ये भी हम प्राउड फील करने वाला बात है कि वर्ल्ड में मैक्सिमम वर्ल्ड का बाद बोलने से तो जो मिथुन बोलता है, मिथुन हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादा पाया जाता है। तो टिबेटियन वहाँ पे भी थोड़ा था, लेकिन इस पर इतना पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं आया, तो इसलिए मतलब ये नहीं दिया गया है। तो ये वाला अरुणाचल में ज्यादा है, 3 लाख के आसपास है, फिर उसके बाद मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में है। तो यहाँ पे भी हम लोग का टीम, हम लोग भी खुश में था। तो डिस्कस करने के बाद लास्ट टू लास्ट हमको मालूम हो गया यहाँ पे मिथुन ऑलरेडी है। तो इसके बाद हम जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मिथुन, NRC मिथुन बोलता है, यहाँ पे मैजी फेम है, वहाँ का जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के साथ हम डिस्कस करने के बाद उनको बुलाया, यहाँ का जो मिथुन है ये मिथुन हम लोग का दिमाग का मिथुन उनके साथ नहीं मिलता है।
2: अच्छा,
1: कैरेक्टरिस्टिकली अलग है, क्योंकि अरुणाचल का मिथुन नागालैंड के साथ नहीं मिलता है, नागालैंड का मिथुन मिजोरम के साथ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसीलिए ये बात भी मतलब इस बार गूगल में भी आप लोग पूछने से मिल जाएगा कि मिथुन इन आसाम बोलने से हम लोग का दिमाग आसाम आ जाता है।
0: अच्छा।
1: तो अभी हम वहाँ पे भी काम कर रहा है उस मिथुन को बसाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम हो गया। आगे सभी को मालूम है मिथुन था है बोल के, लेकिन वही बात हम बार बार बोला कि खुद को भी बसाना है और बाकी प्रोडक्शन लाइन में हम लोग का वो भी वेरिएशन भी लाना है। तो ये हम बोल रहे

0: पता है कि हम लोग को जो आपने बोला है कि हम लोकल जो ब्रीड के लिए जो संरक्षण वाला भी हम लोग को ये स्कीम बा ये पॉलिसी लेने लगेगा, और उसके साथ साथ भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो टेक्निक है वो टेक्निक भी यूटिलाइज करने लगेगा।
1: सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे डिजीज़ के बारे में कि पशुओं में होने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं, इसका रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किया जाता है या फिर किया गया है?
0: हाँ, ये रोग बोलने से रोग का मतलब टाइप अलग अलग होता है।
1: हाँ
0: जैसे अभी सबको मालूम हुआ कि सुअर में भी
1: हाँ
0: ये नया बीमारी तो बोलने लगेगा, ये 2-3 साल ही हुआ
1: हाँ
0: यहाँ पे, मतलब आसाम में आया हुआ, तो यहाँ पे भी पहुँच गया ये बीमारी। तो ये बीमारी बोलते इस बीमारी को बोलता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर।
1: हाँ
0: तो
1: अफ्रीकन स्वाइन।
0: ये बीमारी 2 टाइप का होता है, एक तो बैक्टीरियल का वजह से और एक तो वायरस का वजह से। जो बैक्टीरिया का वजह से होता है उसको हम एंटीबायोटिक देके ठीक कर सकता है, लेकिन जो वायरल का होता है तो वायरस से होता है। तो वायरस वाला बीमारी एक बार लग गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, बिफोर ट्रीटमेंट उसको वैक्सीन करा जाता है। तो इसीलिए हम लोग का जो था मतलब एम था कि एक बीमारी है जो पाँव में घाव लगता है, मुख में घाव लगता है, उसको हम लोग FMD बोलता है, फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब जो आसाम इसमें सबोका बोलता है और हिंदी में भी बोलता है इसको, मतलब पाँव मुख में घाव लगने वाला बीमारी। तो ये कैटल में मतलब गोरू में गाय में होता है और बाफेलो में होता है वॉइस में, और कभी कभी पिग में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग का इमा इफेक्ट होता है कहाँ पे, कैटल में एंड बाफेलो में। तो आप लोग देखिए, एक बाफेलो को अगर मतलब ऐसा बीमारी हो गया फिर उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं मिला बाद में, फिर होके तो मर जाने से तो बहुत नुकसान होता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बहुत नुकसान हो
0: तो
1: जाएगा।
0: इसीलिए हम लोग डिपार्टमेंट से आगे में जो हम बोला कि आज से 12 साल आगे में जो था,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो स्पीड अलग हो गया, अभी फुल स्पीड में हम लोग डिपार्टमेंट चलता है।
1: जी
0: तो इसीलिए हम एवरी जो जितना भी फार्मर्स लोग हैं उस लोग को हम घर घर में जाके वो वैक्सीन देने के लिए हम लोग कोशिश में हैं और देता भी है, लेकिन मैक्सिमम आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग का घर में जितना भी बाफेलो हो या कैटल हो उसको FMD वैक्सीन आप लोग कराए लीजिए। और कोई कोई बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग का यहाँ पे बीमारी नहीं है, करने का ज़रूरत नहीं है,
1: हाँ
0: लेकिन नेक्स्ट ईयर मालूम हो जाता है उन लोग का गाँव में लग जाता है।
1: जी
0: तो इसीलिए वो आप लोग गलती मत कीजिए उसमें, वैक्सीन देने के बाद ऐसा कुछ नहीं है गाय मर जाएगा, उसका दूध कम हो जाएगा, बाफेलो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको बीमार से प्रोटेक्ट करता है
1: जी जी
0: कि नेक्स्ट बीमार नहीं होने के लिए। तो बाकी जो बीमारी होता है सपोज बैक्टीरियल जो होता है उसके लिए हम लोग के पास एंटीबायोटिक है। तो ये लोग जब मतलब लेके आने से डिस्पेंसरी नहीं तो हम लोग को आदमी को लेके जाने से वहाँ पे ट्रीटमेंट करके छूटता है। तो अभी पिग सेक्टर में जैसे हो गया पिगारी, हम लोग का यहाँ पे तो बहुत आदमी लोग पिग पालता है,
1: जी
0: 2-2 3-2 वाला, जो हम लोग का ऑर्गेनाइज फार्मिंग नहीं बोलता है उसको, अनऑर्गेनाइज, और हम लोग का ट्रेडिशनली पालता है।
1: जी
0: लेकिन ये बीमारी हम लोग के यहाँ पे भी डूब गया अभी धीरे धीरे। तो यहाँ पे घुस जाने के बाद क्या हो गया, जो 2-2 है पिग दिन में ठीक है, नेक्स्ट डे में बीमार होकर फिर नेक्स्ट दिन में मर गया। तो ये हम लोग का भी थोड़ा ये करने लगेगा, इसको बोलता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सबसे खतरनाक है, इसमें 99% मोर्टिलिटी है जो एक्यूट होता है, मतलब इमीडिएटली होने वाला।
1: जी जी
0: तो ये उसको बसाने का एक ही तरीका है, उसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकला,
1: जी
0: बाकी डिजीज का वैक्सीन निकला
1: हाँ हाँ
0: लेकिन इसका अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है।
1: जी
0: तो इसको बसाना है जैसे हम लोग का कोरोना का टाइम पे जैसे हम लोग बस रहा था, आइसोलेट होके
1: हाँ
0: अलग से बैठने वाला,
1: हाँ
0: बीमारी
1: हाँ
0: का घर में नहीं जाने वाला, या बीमारी को टास्क करके आके वही ड्रेस लेके घर में नहीं डुकने वाला, यही काम करने लगेगा कि आप लोग जब भी बाजार से मांसो लेके आएगा उस मांसो वाला जो भी पोर्क हो लेके आने से वहाँ पे धुलाई करने के बाद वो पानी में नहीं जाना है। वो पानी अगर पी लिया, अगर वो मांसो तो अगर मांसो में अगर बीमारी लेके आने
1: जी
0: से
1: जी
0: तो वो पिग वहाँ पे पानी पी लेने से वो प्रॉब्लम हो जाएगा।
1: हाँ
0: फिर आप लोग ये भी मत कीजिए कि किसी का घर में बीमार हो गया, आप लोग को बुला भी सकता है, आओ तो आप देखो मेरा घर में घर का जो ये सुअर है तो बीमार हो गया, तो आप लोग वहाँ पे देख के आके वही वाला ड्रेस लगाए कि आप लोग का घर में का जो फार्म है, आप लोग का जो गुहाली है वहाँ पे आके दाना देने यहाँ से, तब भी शांस है आप लोग का। तो इसीलिए आप लोग को इस सुअर को इस पर ऐसे रखना है कि उस एरिया में ना किसी को जाने नहीं देना है, और आप खुद जाने से भी एक ही ड्रेस वहाँ पे लगाना है, जिस ड्रेस लेके जाएगा वो आके खोल के दूसरा ड्रेस लगाना है, और वहाँ पे जो पोटास होता है पोटास के साथ पानी मिला के पूरा एरिया तो दिन में एक बार मार देना है,
1: छिड़काना है।
0: छिड़काना है,
1: हाँ हाँ
0: तब तो वो बीमारी भी मतलब रोकने का साल से। फिर ब्लीचिंग पाउडर होने से भी, मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी थोड़ा मार देना चाहिए।
1: हाँ जी
0: और सुअर को स्पेशली इसी टाइम पे खुल के मत रखिए आप लोग, क्योंकि खुल के रखने से किसी का घर में बीमार लग जाने से वहाँ पे जाके वो बीमारी तो लेके आ जाएगा। तो इस टाइम पे एटलीस्ट ये 2 मंथ्स, 2 मंथ्स आप लोग
1: उसको
0: सुअर को,
1: आइसोलेट करना
0: हाँ
1: है।
0: हाँ आइसोलेट करके अपना एरिया में ही रखने देना है। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप लोग मांस खाना खाने से भी, मतलब ये पोर्क खाने से भी, तो लाए के मतलब सेपरेट से बनाए के वही ड्रेस लगाए के एटलीस्ट वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि
1: अच्छा
0: हम लोग बोल नहीं सकते आप लोग जो मांस लेके आए वो बीमार ही लेके आ सकता है। तो इसलिए उसमें आप लोग को ध्यान देना है। और बाकी आप लोग का जितना भी कुछ प्रॉब्लम होने से इमिडिएटली, आप लोग का सूअर का प्रॉब्लम देखा, बाफेलो का प्रॉब्लम देखा, गाय का प्रॉब्लम देखा, बकरी का प्रॉब्लम देखा, देखने से भी आप लोग इमिडिएट, हम लोग के अभी मैक्सिमम 2 ठो गांव का बीच में ही एक तो सब सेंटर है, वहाँ पे सब लोग रहता है, वहाँ पे खबर देना है आप लोग को। खबर दे के इमिडिएटली बुलाना है, दिखाना है,
1: ठीक।
0: बाद में डिपार्टमेंट अगर बड़ा ये इशू हो जाने से हम लोग टेकअप कर लेगा ये।
1: हाँ, आपका मतलब है कि जो पशुपालन करते हैं उन लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: इसका
0: हाँ
1: प्रॉब्लम क्या है। आपने बोला है कि ये गांव गांव जाके अपना आदमी को भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे दिमाशाओं में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गाड़ी जाता नहीं है, तो उसमें से आप लोग वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिमोट एरियाज़ में जाने के लिए कुछ सुविधाएं होती है।
0: देखिए जैसे मतलब तकलीफ तो कर रहे हैं हम लोग का डिपार्टमेंट,
1: हाँ
0: तो क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग फैसिलिटी उन लोग को नहीं दे पाया। कोई अपना जो मोटरसाइकिल होता है वो लेके चला जाता है, कोई कोई जाके वहाँ पे रुक जाता है उस दिन। फिर हम लोग के ये फैसिलिटी दे के रखा है, जो वैक्सीन ले जाने वाला
1: जी
0: उस वैक्सीन कैरियर हम लोग बड़ा सरफ दे के ले देता है, सो डेट वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट वैक्सीन कर सकता है। बाकी उस दिन में ही किसी का घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, वो लोग वहाँ पे उस दिन ही ट्रीटमेंट करके आता है। इतना भी हम लोग का वर्कर्स है वेटनरी डिपार्टमेंट का, ये लोग काफी तकलीफ कर रहा है। और अगर हम लोग का जितना भी कृषक बंधुगण है वहाँ पे सुन रहा है अभी, वो लोग थोड़ा सपोर्ट देने से तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि आप तो कोई मतलब आँख में देख रहा है कि आज से 12 साल आगे मैं कैसा था,
1: हाँ,
0: किस
1: अभी
0: हिसाब
1: कैसा
0: से हम
1: है।
0: लोग दौड़ रहा था,
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: हम कैसा दौड़ रहे हैं।
1: जी
0: और आजकल थिंकिंग ही अलग हो गया हम लोग ऐसा, मतलब ऐसा बात नहीं है कि अभी हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन होता है 18 सीटिंग बोल के, वहाँ पे आप लोग टाइप करने से, वहाँ पे सपोज किसी का नाम पे टाइप किया, उसका कितना गाय है, कितना एज का है, एवरीथिंग निकाल के आ जाता है
1: डाटा।
0: दाता। लेकिन उसके लिए हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जितना भी कृषक बंधुगण सुन रहा है, आप लोग को पास अगर हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई आदमी जाने से भी, जाने के बाद आप लोग आई कार्ड देख लीजिए कन्फर्म होने के लिए, आई कार्ड है कि नहीं। होने के बाद आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आधार मांगेगा, फिर इसमें आप लोग का फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर मांगने के बाद वहाँ पे आपके पास एक तो OTP आएगा, सिर्फ OTP तो हम लोग को भी देना है। OTP देने से तो आपका वहाँ पे हो जाएगा कि आपके पास कितना एनिमल है, आप ओनर है। तो ये वाला एनिमल जो हम रजिस्टर करेंगे, फिर वो दूसरा आके नहीं बोल पाएगा कि ये मेरा है बोल के। तो इसीलिए ये भी एक तो अच्छा बात है आप लोग के लिए। और उस हिसाब से तो हम लोग का जो पॉपुलेशन मालूम होगा, उस हिसाब से हम लोग को पैसा आएगा डिपार्टमेंट में, हम लोग का डिपार्टमेंट को उस हिसाब से पैसा मिलेगा। सपोज हम लोग का यहाँ पे 10,000 गाय है, आप लोग खबर नहीं देने से, नहीं है मेरा पास गाय ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोग के पास है, और ये नहीं देने से हम लोग को 5,000 मिलेगा पॉपुलेशन, 10,000 में तो 5,000 मिलेगा। तो उस हिसाब से मेडिसिन भी 5,000 के लिए आएगा, बाकी जो भी खर्चा है 5,000 के लिए आएगा, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ही नीचे रह जाएगा। तो इसलिए आप लोग को अनुरोध है कि जो भी है बढ़िया से बोल लीजिए डिपार्टमेंट का आदमी लोग को, और जो भी 18 सीटिंग का OTP नंबर जो भी होगा वो आराम से दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं इसमें।
1: हर पशुपालक को अपना जो भी पशु पाला है वो आधार के साथ उसको लिंक करना ही है।
0: लिंक करना है।
1: तो अगर लिंक करेंगे तो इसमें हमारे पशुपालक को ही फायदा होगा कि फ्यूचर में अगर उनको किसी दवाई की ज़रूरत पड़े या किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो उनको आसानी से मिलने का चांस है।
0: हाँ मिलने का चांस है। अभी देखिए मतलब हम लोग ट्रीटमेंट अभी धीरे धीरे वो होने जा रहा है, हम लोग जितना भी चिकित्सा करेंगे एनिमल को, पशुओं को, तो उसमें हम लोग को जिसका आदमी का पशुओं को हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका वहाँ पे नंबर देने लगेगा। तो नंबर देने के बाद उसका वहाँ पे भी क्या क्या मेडिसिन है उसको मैसेज आ जाएगा, इन फ्यूचर ये होने वाला है। क्योंकि हम लोग काफ़ी देखता है ना, वहाँ पे किसी का घर में ट्रीटमेंट करने जाने के बाद सपोज 2 मेडिसिन हम लोग वहाँ पे यूज़ किया, लेकिन हम लोग को दिखाया पास तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ही नहीं, तो ये भी वहाँ पे पकड़ा खाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्लियर ये करने के लिए, पिक्चर लाने के लिए ये सिस्टम में जा रहे हैं, तो आप लोग साथ दीजिए।
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। और सर, फिर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो करते हैं आप लोग, इसमें आपको कैसा

0: से तो नेक्स्ट टाइम आने का कोई चांस ही नहीं है बीमार आने का। और आप लोग को मालूम है बीमार आने से इतना तकलीफ होता है, डिपार्टमेंट का भी तकलीफ, आप लोग का भी तकलीफ,
1: जी
0: तो इसीलिए
1: बिल्कुल
0: वैक्सीन
1: सही।
0: करा लीजिए आराम से।
1: तो हम वैक्सीन की बात कर ही रहे हैं, तो अपने थोड़ी देर पहले आपने ये मेंशन किया, ज़रूर कोई बहुत ही ऐसा सिचुएशन आया होगा कि आपको ये मेंशन करना पड़ा कि रेबीज जो है हमारे पशुपालक के बीच में ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है।
0: अभी रेबीज ऐसा एक बीमारी है,
1: जी
0: आप लोग को मालूम ही है, अगर आदमी को हो गया तो बसेगा तो नहीं, 1% भी चांस नहीं है बसेने के लिए। इस
1: जी
0: सबसे
1: बिल्कुल।
0: एनिमल का भी है, वो रेबीज कैरी करने वाला एनिमल ही है डॉग कैट। तो अब देखिए, एक कुत्ता का अगर मतलब वो रेबीज हो रहा है, आप लोग का बच्चा भी उसके साथ खेलता है,
1: जी
0: अगर अनोइंगली आपको तो मालूम ही नहीं उसका तो बीमार है बोल के, तब वो बीमार अगर आप लोग का बच्चा तक चला जाने से तो उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा ना,
1: जी
0: आदमी
1: बिल्कुल।
0: आंखों का सामने में एक आदमी खत्म हो जाएगा। तो
1: जी
0: इसीलिए उस हिसाब से हम लोग को ये जूनोटिक डिजीज बोलता है, एनिमल से ह्यूमन तक जाने वाला, तो इसीलिए रुकाने के लिए हम लोग कोशिश में हैं। और हम लोग लाकी अनाफ भी है, तो लास्ट ईयर रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इस साल तो भगवान का दया से तो कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं है। और हम भी अकॉर्डिंगली जितना भी डॉग है, डॉग को और कैट को भी हम लोग वैक्सीन करता है। लेकिन ये भी एक तो बात है, डिमांड में अभी तो डिमांड में कर रहा है, जैसे सपोज कुछ एरिया लोग हम लोग डिमांड किया और जाके हम लोग करता है, तो क्योंकि मास वैक्सीनेशन के हिसाब से जाने से तो कोई मतलब नहीं करता है,
1: जी
0: तो वो बोलता है हम लोग का कुत्ता का बीमारी नहीं किया, बीमार दिखाने के लिए तुम लोग ये कर रहा है बोल के। तो इसीलिए आप लोग भी उसमें भी साथ दीजिए, क्योंकि एक बार कुत्ता में हो गया, आपका घर में बकरी है, बकरी को काटा, फिर बकरी का भी हो जाएगा, फिर उसने गाय को भी काटा, गाय का भी हो जाएगा,
1: जी जी
0: तो आदमी का तो बोलूंगा ही नहीं, आदमी का होने से तो कैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बीमार को रुकाना है। और आप लोग को जितना भी सुन रहा है हम लोग का फार्मर्स लोग, आप लोग को एक तो बोला बोलने के लिए, एक तो ये खुशी का मतलब न्यूज़ देने के लिए जा रहा हूँ कि रिसेंटली हम लोग का यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी का बोर्ड का अंदर में जितना भी है, ऐसा एक सिस्टम हम लोग बनाने जा रहा है जहाँ पे हम लोग का ये बीमारी स्पेशली जो स्ट्रे डॉग होता है, ऐसे ऐसे घूमने वाला, उन लोग का वजह से ज़्यादा होता है।
1: अच्छा
0: तो अभी इन लोग को हम लोग रजिस्ट्रेशन करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद और डिपार्टमेंट से इन लोग को स्टराइल, फीमेल होने से उसको बच्चा नहीं होने का सिस्टम कर देगा, मेल होने से उसको कैस्ट्रेशन कर देगा, कि सो देट ये लोग ब्रीडिंग नहीं कर सकते, अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि उसका ओनर भी नहीं कोई,
1: जी
0: ये लोग ही बीमार ज़्यादा कैरी करता है। और ऊपर से ये होने से ऐसा भी एक तो ऑर्डर रिसेंटली निकलने वाला है कि जिसका ओनर नहीं है म्यूनसिपलिटी का, वहाँ पे कुछ शेड होगा, रूम होगा, वहाँ पे उन लोग को रखेगा और खाना पीना भी देगा,
1: अच्छा
0: ऐसा एक ये ट्रेंड अभी रिसेंटली आने वाला
1: अच्छा
0: है।
1: मतलब उनके लिए अलग से
0: हाँ,
1: शेल्टर
0: अलग से
1: बनाया जाएगा।
0: एग्जैक्टली। हाँ
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हमारे महिला और युवा यानी हमारे यहाँ के जो यूथ है, इनको पशुपालन से जोड़ने के लिए मतलब हमारा डिपार्टमेंट कुछ काम करता है इसके लिए।
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये अब बहुत मैक्सिमम हम लोग का आदमी को मालूम नहीं था लास्ट टू लास्ट ईयर।
1: जी
0: तो ये गवर्नमेंट ऑफ असम ने सीएम त्रिपुले बोल के मिनिस्टर, ये कुछ स्कीम है, उस स्कीम का अंदर में हम लोग देखा कि मैक्सिमम दिमाग में जो भी है मैक्सिमम ऑप्शन लेने सकता है, वेटरनरी लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, या फ्लोरिकल्चर लेगा, या इंडस्ट्री में जाएगा, ये अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग का वेटरनरी को ज्यादा सोच किया। तो
1: अच्छा
0: इसका मतलब है अभी जो यंग जनरेशन है
1: जी
0: ये लोग इंटरेस्ट धीरे धीरे हो रहा है। और हम एक बात बोलता है, आप लोग जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे देखिए, जो आदमी लोग बिजनेस करने के लिए या कुछ सिस्टम बनाने के लिए वे लोग गांव तक जाता है, टूवर्ड्स विलेज, टाउन से विलेज जा रहा है अपना कुछ इनकम बढ़ाने के लिए
1: जी
0: हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाउन में जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो ये भी करना है, लेकिन अभी इस हिसाब से हम लोग को चलना है कि हाँ ठीक है, फार्मिंग करने के लिए तो आप लोग में कहाँ फार्मिंग कर पाएंगे, गाँव अपना
1: जी
0: गाँव में ही, तो गाँव में ऐसा फार्म करना है जिसको देख के 10 जन इंटरेस्ट हो, हाँ ठीक है बढ़िया फार्म कर रहा है। और आप लोग कभी आइए हम लोग के मिलने के लिए, क्योंकि फार्मिंग करने से कितना लाभ होता है।
1: जी
0: तो इस हिसाब से हम लोग देखा है कि औरत लोग भी है, वो लोग भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा इस बार।
1: जी
0: तो हम लोग जितना भी जहाँ पे मीटिंग होने से, तो हम लोग देखा है कि जो एसएससी ग्रुप मैक्सिमम फीमेल का ही हम लोग देखा है, वो लोग भी अच्छा काम कर रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं इन लोग को सपोर्ट देने के लिए, अभी सीएम ट्रिपल ए स्कीम है, फिर उसके बाद केसीसी बोल के एक तो किसान क्रेडिट कार्ड का एक तो लोन सिस्टम है, वो भी
1: जी
0: है। और बाकी हम लोग का एनएलएम नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का अंदर में हम लोग का इस बार यहाँ पे नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम देने के लिए वो लोग गवर्नमेंट भी बोला, तो वहाँ पे जो भी स्कीम आएगा डेफिनेटली हम ये अच्छा काम करने वाला जो भी ये महिलाएं हैं एस एस बेसिक ग्रुप है या एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन लोग को हम लोग मतलब इंक्लूड करेंगे वहाँ पे।
2: जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में पशुपालन

0: उन क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, आप लोगों ने क्या चुनौतियाँ फेस किया है और उसके निपटने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या उपाय होता है?
1: सभी काम में चैलेंजेस आता है,
0: जी
1: वो तो आएगा ही। कोई भी आधार कार्ड हम लोग को नहीं दे रहा, लेकिन हम धीरे
0: हाँ
1: धीरे
0: हाँ
1: आदमी गांव वालों के पास जाने लगा,
0: हाँ हाँ
1: फिर फार्मर्स के पास जाने लगा डिस्कस करने का, अभी सभी आधार कार्ड देने लगा। फिर उसके बाद आगे में ऐसा था, वैक्सीन करने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं था, गांव में डुकने के लिए नहीं देता, क्या जरूरत है हम लोग का, तुम लोग आने से और बीमार हो जाएगा बोल के। लेकिन अभी वो भी सिचुएशन चला गया, वो सैलेंजेस था पहले, वो ये हो गया। फिर ऐसा बात है, तो सैलेंजेस है तो डेमोग्राफिक के वजह से ये तो सैलेंजेस आ रहा है, लेकिन इसको हम तो सैलेंजेस नहीं बोलेगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जब वैक्सीन देने के लिए जाता है गाँव में, तो इतना फ्रीज भी नहीं है, कोई कोई गांव में काइंड होने से भी गांव वाला लोग इसको इतना फ्रीज चीज का यूज नहीं करता, लेकिन हम लोग का वैक्सीन तो बिना फ्रीजिंग होने से तो खराब हो जाता है।
0: जी
1: तो ये हम लोग का एक बड़ा सैलेंज से आ रहा है, कोई गया 300 जैसा डोज लेके तीन प्लेस कवर करने के लिए, कोई प्लेस में रुका रात में, दूसरा तो 10% पेंडेंट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस जाने के लिए वो वैक्सीन खराब हो जाता है, फिर उसको वापस आने लगता है, फिर वैक्सीन लेके चला जाता है। तो ऐसा वाला कुछ चैलेंजेस है। बाकी हम लोग का जितना भी आगे का चैलेंजेस था, जैसे हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सब सेंटर, आगे में देखिएगा सब सेंटर सब गिरा पूरा ऐसा था ना, टूटा फूटा ऐसा था, लेकिन अभी देखिए सब मैक्सिमम ही ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट भी इसमें ध्यान दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए बोल के। तो यही चैलेंजेस तो रह गए लाइफ का, जितना भी जहाँ पे जाएगा आप लोग, तो इसको ओवरकम करना है। और बाकी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गांव वाला को, जितना भी हम लोग का फार्मर्स फ्रेंड है जो लोग सुन रहा है, आप लोग को सिर्फ हम लोग के साथ एक साथ कदम बढ़ाना है,
0: जी जी
1: एक साथ
0: बिल्कुल
1: रहना है, आगे आना है, तब एक टू टीम बनाना है, तब हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है या हम लोग का जो भी असुविधा हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करने से क्या होगा, तब आप लोग को हेल्प मिलेगा और हम लोग का भी वेटरनरी डिपार्टमेंट इस सबसे आगे बढ़ेगा।
0: जी बहुत अच्छी बात बताएं, क्योंकि अगर कुछ काम में आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं मेलिडी
2: और मैं जिदित
0: आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। प्रस्तुत करता थे जुदित एलरांचल और मेलोडी आमो।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आइए आप शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और सबसे पहले सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से ये गाना SP बाला सुब्रमण्यम के आवाज़ में। संगीतकार है राम लक्ष्मण और गीतकार है देव कोहली।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं, उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, दिल का रिश्ता फिल्म से। संगीतकार है नदीम श्रवण और गीतकार हैं समीर।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में 8:45 होने ही वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अलनीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का अफलम केंद्र है। दोस्तों आज मंगलवार है, हर मंगलवार रात के 9 बजे हम आपको सुनाते हैं आपके SMS और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपके गीत। चले अब एक हफ्ते के इंतजार के बाद देर ना करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं सन्यासी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज़ में। संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार है विशेश्वर। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS आया है पटेल नगर मालवात पंजाब से। भेजने वाले श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू।

दोस्तों, अगला एसएमएस आया है बियारा पार्ट फोर कछार आसाम से। भेजने वाले श्रोता हैं तरुण राधा, रौनक, ऋषभ और अरुण सिन्हा। साथ ही काउंसिल कॉलोनी हाफलोंग से भेजने वाले श्रोता हैं रतन शर्मा और उनके दोस्त। इन्होंने सुनना चाहा है हकीकत फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के आवाज़ में। संगीतकार है बापी लहरी और बोल दिया है इंदिवर ने।

दोस्तों, आइए अगला गाना सुनते हैं। अक्सर फिल्म से गायकार और संगीतकार है हिमेश रेशमिया और गीतकार है समीर। इस गीत को सुनने के लिए SMS आया है सिविल लाइन रोहतक हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं मानसी, ललित, देव, आशु, पंडित।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हफलंग केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं आपके एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपके गीत। श्रोताओं, अगर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना चाहते हैं तो हमें एसएमएस या व्हाट्सएप जरूर करें। एसएमएस या व्हाट्सएप करने के लिए टाइप करें गाने की बोल, फिल्म का नाम, अपना और अपने साथियों का नाम और इसे भेज दें इस नंबर पर। नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर 9435700596 से अपना पता जरूर लिखें। हमें आपके एसएमएस और व्हाट्सएप का रहेगा इंतज़ार। दोस्तों, आइए अगला गाना सुनते हैं अग्नि फिल्म से। मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक के आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीतकार है आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने के लिए हमें एसएमएस भेजने वाले श्रोता हैं पाडू अमलारेम वैजयंतिया हिल मेघालय के, लेबनमन पोतमी और उनके दोस्त अलेक्जेंडर फोलुंग, किरोत मुखिम, यक्युमा मुलत, सारिका सुमेर। साथ ही इस गीत के लिए एसएमएस आया है लोधी हफलुंग से। भेजने वाले श्रोता हैं रामाकांता उपाध्याय और उनके दोस्त।

दोस्तों, कुदाली नगेंद्र नगर श्री भूमि आश्रम के हितेंद्र दास और साथी देवीनगर हफलों के धर्मराज उपाध्याय और मित्रलाल उपाध्याय, इन सभी ने सुनना चाहा है अंदाज फिल्म का ये गाना। उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ में संगीतकार है नदीम श्रवण, गीतकार है समीर।

दोस्तों आइए कार्यक्रम का अंतिम गाना सुनते हैं अनुरोध फिल्म से, किशोर कुमार के आवाज़ में। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS आया है बसाबारी कालाचंद डिमा आसाव से। भेजने वाले श्रोता हैं समरजीत कैंपराई और उनके दोस्त।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का आपके एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपके गीत। श्रोताओ, अगर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना चाहते हैं तो हमें एसएमएस या व्हाट्सएप जरूर करें। एसएमएस या व्हाट्सएप करने के लिए टाइप करें गाने की बोल, फिल्म का नाम अपना और अपने साथियों का नाम और इसे भेज दें इस नंबर पर। नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके एसएमएस और व्हाट्सएप का रहेगा इंतज़ार। धन्यवाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म

0: सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं इस सभा के अंतिम कार्यक्रम, यानी कि फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। और सबसे पहले सुनते हैं दिल फिल्म का ये गाना, उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज़ में, आनंद मिलन का संगीत और बोल है समीर का।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं, हेमा सरदेसाई और कुमार सानू के आवाज़ में, बीबी नंबर वन फिल्म से। संगीतकार है अनु मलिक और गीतकार है समीर।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीतकार है जतिन ललित और गीतकार है समीर।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्र गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की दूसरी सभा समाप्त होती है। कल सुबह पहली सभा में सुबह के 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी को दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।